मैसेज सरत थोड़ा देखिए गमा रूम बने मैसेज कौन के द प्रोग्राम सोखते हो शेर चनशी वही सलाम मासूम भाई संगे खैर देखना उस रात शेर हुआ या परुन में जड़ल नो अमीरा तवीची वली जाड़े माँ वर्तवी माता अकीब जान भाई शेर नवई मारिया मलक प्राम बाम हेल نتا تخما سوز لوچ شیر شیر شیر شیر بیا میم دتا شیر وی

हेलो सलामुना संगम गचल दीजिए सहलात वाकियाती ठीक ठाक ये खैर खरीते ये कि नंदास बा ठीक ठाक ये खैर खरीते सर भाई दिलवर रेडियो आवाज और दो पर आई हो जहान मनना

इलाजुन ना ना उम्मीद शुरू बीमारानो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु।

0: आप इस्लामी सुन रहे हैं।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारे लॉग ऑन टू www.pk
2: We are the Sting Day's best music with 30 minutes all

डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमची द ऑयली स्किन औ द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कुमची प सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्मई औ यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगा हम खत्मीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल औ क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी औ दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी औ द दानो दाहुना प मुकम्मल तोगबानी खत्मई नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली औ द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.

0: लगी इस्तेमाल मास तरीकों को मतलब माच बटाने के इस्तेमाल को जुबलाड़ा अस्पताल लगा ना इस्तेमाल के होता सुन दिमाग बिल्कुल आराम शी वजूद बिल्कुल नॉर्मल शीदशपी दादी दिमाग होता दादी उखतूता कम फॉलिकल दीदी तीर ज्यादा इंतहाई फायदा और रसई बदी शर्त बने दीदी इस्तेमाल न उड़ान दी बता सुलग लहसुन लामदू के बलून लास वक्रीम लास के बेलडो ना एंटी हेयर लॉस टॉनिक और तवे लगी बता सुस की वाच हुई और द्वारा लहसुन यू बल सरो मगे व्यक्तु जुर्र जुर्र मसाज हुई हल्का हल्का मसाज बगू डबल विकट बरसन न कोई और दिन अलावा तासु बदी व्यक्तु दी जुर्र पूरी व्यक्तु दी सुख पूरी बदार मुकमल तासु गड़ा हुई और चिकल दगा तासु गड़ के इतना सुना पदी की कजईदर और किरानुशी बस सही तो गबान जिना तासु इस्तेमाल के मुसलसल 74 डेज मुसलसल दा इस्तेमाल के और सर खुराक दवा बेलडो ने हेयर किट इस्तेमाल की तसासु द विटामिन बी 12 वो जमाने द व्यक्तु तो गुर्जदो मसला रा रवान ही बिल्कुल बनो गुर्जी 74 डेज पूरे बेलडो एंटी हेयर लॉस टॉनिक बेलडो एंटी हेयर फॉल शैम्पू और दी सर खुराक दवा बेलडो ने हेयर किट इस्तेमाल की हो लड़के द व्यक्तु आग मसली मुकमल आवारे की मसली थी बिल्कुल द आवारे दोनों नाली याद लड़ी खबर दमला दर्द हमारी सरकोल पे खबर खार हैदर मुमंद अस्पताल सवाबई शाह मंसूर हैदर मुमंद अस्पताल सारसदा मर्दान रोड हैदर मुमंद अस्पताल पदाग्रीवान अस्पताल की बाहर मुल खसूसी मशीनान द अमला दर्द मालूम दोबारा रागली दियो दमला दर्द वजूहत मालूम की दमला दर्द बार इलाज कही हो दमला दर्द टूल मर्द बार अलविदा हुआ है तासु कुछ रेडियर दर्द नु गोली उखड़ दमला दर्द मुला दमला दर्द लासता सुबह इंतहा परेशान है बीमार नोर मकड़ो बीमार माल राउली क्यों दमला दर्द दटूर मर्द बारा खत्म हो दमला दर्द वजह चिंदा कचरी सासु दमला डिस्कुन दी तो दमला मोहरी दी कद देने लावा सासु दमला पटी दी तो दमला रघुने दी दस किस्म वजूहत वो बिना वाने हम सासु दमला दर्द रा रवान दी और दगा दर्द तासु रकोल वाले दगा दर्द और रकोल दोबारा इस्तेमाल की सुशी जी दगा दर्द पार बल्कि इस्तेमाल न की दगा दर्द पार कहता सुधीर दर्दुनु गोले इस्तेमाल की औ मजे न दकड़ी नतासु कोशिश की चाहे दर मुमंद अस्पताल पे खबर खार विजिट की जी बाजी बाजी खल को तो मासंग जिक्र मुझे बाजी बाजी खल को तो दुमला दर चितन अगर गुरदू तो कानो पोज माने गुरदू द तकलीफ पोज माने दन औ तो दुमला दर दर रवान हुई पखवानी वक्त की या मतलब दिन उड़ान जोर कार्य कड़ी हुई द्रुन कार्य कड़ी हुई याद दिन लावा चाहे तुमला बानी गुजार खोड़ ले हुई चाहे दर्ज खोड़ ले हुई या चाहे अक्सर यू कुर्सी के नास विकेट के नास एकदम जिदन उड़ापासी याद दिन लावा चरता अगी चरता नेर की लाम्बली हुई याद सर जिदन अगी चरता पे खूबू वाली लाम्बली हुई और दागी दमला दर शुरू से हुई
1: We'll be back right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद है हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक

0: दवाएं ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
1: जिया स्टोर रूड़ी दवाबे दिंद मेन्दू दारा यो जबरदस्त खुशखबरी के पहागे की ताउस्ता दरानो द सूट खरीदारे दारा मार्केट दतलो हिस जरूरत निश्ता उस पकपल कोर के द जिया स्टोर न सर्दे दारा द बेहतरीन डिजाइन और रंगुनो लेडीज सूट तरला सकड़े और हगा हम पकपल कोर के द व्हाट्सअप जरिया द होम डिलीवरी सहूलियत सरा पार्सल चेक के या पैसे वर्कड़े। जिया स्टोर द जनानो आगा महसूस स्टोर दे जी हगे की सिर्फ और सिर्फ जराना राबिता कबिली पकोर की द कपड़ो कारोबार शोरो कवल वाड़ी जिया स्टोर ताउस्त पकवानी द सूट द आर्डर कबूलो सहूलत हम दर कभी पकपल कोर की द कपड़ो बाइजता कारोबार शोरो पड़े। जिया स्टोर द टोलो नगद सहूलत दा हम दर कई चिकम सूट खर्च निशी या ताउस रिप्लेसमेंट कवल वाड़े पर नवी डिजाइन के नुहम कवल इशे द हर किस्म नवी डिजाइन कलेक्शन द पारा हम उस जमुन व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करे पदी कम्युनिटी की बा द प्राइवेसी तहत सासु नंबर न शो की ब्याह हम उस जमुन दे जिया स्टोर विजिट रोकड़े पता निस रहमानिया मदरसा मेने टूपी सवाबी या जमुन दे जिया स्टोर पर व्हाट्सएप बांधे राबिता उकड़े 0313-90-53-965।
2: माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा
2: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 0938-273265।
4: खुश खबरी हागा टोल बीमारान चा हड़ू की माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ा खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लसुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दम हरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमानो खपी कगी हुई नुदा हगटोल मरीजानो दपारा द खुशालय खबर उस बाद हर इतवार पर बांधी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर चर सलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखबर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजीगर चर सलोर बजो पोरी तासो तशरीफ रवड़े से नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी मजीद द मालूमातो द पारा या द नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानी के 0314-15-13-232।